0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे

0: से नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी औसट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात टुडे टू इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बालोतरा। Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
0: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north south corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
5: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first four approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore rupees. Our correspondent has the details.
2: The newly operational CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility represents a major milestone in India's journey towards building a self-reliant technology ecosystem. Once fully ramped up, the plant will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. It will offer comprehensive end-to-end packaging and testing services, including wafer sorting, package design, and failure analysis. Driven by rapid advancements in artificial intelligence and high-performance computing, the facility in Sanand is designed to meet the global demand for advanced memory and storage solutions. The facility will directly cater to global and domestic customers across critical industries, including automotive, industrial automation, 5G communication, and Internet of Things. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
5: Gujarat Anti-Terrorist Squad, ATS, has arrested 8 people associated with the Pakistan-based banned terror outfit Jaish-e-Mohammed. They were arrested from various districts of Gujarat and Madhya Pradesh in simultaneous operations yesterday. According to the Gujarat ATS, the accused were in touch with Pakistani handlers and actively working on behalf of Jaish-e-Mohammed to set up an active network in the state of Gujarat to further its terror activities. They were also working to translate the literature of Jaish-e-Mohammed into Gujarati and spread its ideology. A total of 254 pieces of literature, including the flag of Jaish-e-Mohammed, were recovered from the accused. The investigation also revealed financial links to the Pakistan-based terror group. The arrested individuals have been sent to a 14-day police remand. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on track to achieve its $1 trillion US dollar export target, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter of the current financial year. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said, to achieve the target, goods exports will need to increase from about $440 billion US dollars to around $530 billion US dollars, while services exports will have to rise from roughly $421 billion US dollars to about $470 billion US dollars.
6: Our aim is to grow in the current year. We were 863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach 1 trillion, our goods export will have to increase from 440 to about 530. $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Services will have to grow from 421 to about 470.
5: Over 1,02,000 enumeration forms across the national capital have been digitized so far. According to Office of the Chief Electoral Officer of Delhi, about 33,14,000 forms have been distributed as part of the special intensive revision of electoral rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway in Delhi. Claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. Senior officials from various ministries and departments, including the Union Home Secretary and the Union Agriculture and Farmers Welfare Secretary, were present at the meeting yesterday. During the meeting, Mr. Shah said, the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought conditions in certain parts of the country due to El Nino. He directed the Ministry of Agriculture and all related ministries to remain vigilant and coordinate with the state governments to advise farmers on the appropriate crops to sow. Mr. Shah instructed the officials from the Department of Water Resources to monitor all water reservoirs across the country. The claims circulating in social media that E20 fuel, which is a blend of 20% ethanol and 80% petrol, causes a drop in vehicle mileage are misleading. According to extensive field trials led by the Automotive Research Association of India, in collaboration with Indian Oil Corporation Limited, Indian Institute of Petroleum, Dehradun, and the Society of Indian Automobile Manufacturers, no significant negative impact on vehicle fuel efficiency has been demonstrated. The trials covered approximately 40,000 kilometers on passenger cars and 20,000 kilometers on two-wheelers. It said the mileage is influenced by many factors beyond fuel type, including driving habits, maintenance, tire pressure and alignment, and air conditioning load. In Jammu and Kashmir, a total of 12,168 pilgrims paid obeisance at the Holy Cave Shrine on the opening day of the annual Amarnath Yatra yesterday as the pilgrimage began from the twin base camps of Baltal and Pahalgam. The Yatra commenced in the early hours from both the traditional 48-kilometer Noonwan Pahalgam route and the shorter 14-kilometer Baltal route despite intermittent rainfall. Pilgrims, including men, women and sadhus, began their journey to the 3,880-meter high Holy Cave Shrine amid chants of Bam Bam Bhole after being flagged off by the respective deputy commissioners and senior superintendents of police from the two base camps. Governor of Bihar, Lieutenant General Syed Atta Hussain, and Minister of State for External Affairs, Pabitra Margarita, represented India at the funeral ceremony for the former Supreme Leader of Iran, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, in Tehran. In a social media post, Mr. Margarita said they conveyed respect on behalf of the government and the people of India. They also extended condolences to the families of those who lost their lives in the recent conflict. On to sports. In the FIFA World Cup, Argentina beat Cabo Verde 3-2 after extra time in a thrilling round of 32 match at Miami Gardens in the US to enter the round of 16. Earlier, Egypt advanced after defeating Australia 4-2 in a penalty shootout at Arlington in the US. We have a report.
7: Defending champions Argentina survived a major scare against Cabo Verde, a nation of just over 5 lakh people, before booking their place in the round of 16. Lionel Messi put Argentina ahead in the 29th minute with his 7th goal of the tournament and the 20th World Cup goal of his career in his 30th appearance across 6 editions. Diroy Duarte restored parity for Cabo Verde in the 59th minute, forcing the match into extra time. Lisandro Martinez gave Argentina the lead once again, but Sidney Lopes Cabral produced a stunning equalizer to keep the dog's dream alive. The decisive moment came in the 111th minute when Cristian Romero's header from a Messi corner deflected off Dinier Borges and into the net for an own goal, sealing Argentina's dramatic victory. Earlier, Australia and Egypt were tied 1-1 after regulation time and goalless extra time before Egypt prevailed 4-2 in the penalty shootout to register their first ever World Cup knockout stage victory. Argentina will now face Egypt in the round of 16 on Tuesday. Manik from Sports Desk for Akashvani News.
5: In the final round of 32 match of the FIFA World Cup, Colombia are leading against Ghana 1-0. John Arias put Colombia ahead in the 14th minute with a close-range finish. The winners of this match will face Switzerland in the round of 16. In men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today. The match will begin at 7 this evening, Indian time. The opening game of the 5-match series was abandoned due to rain at Chesterley Street. The IMD has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. Heavy to very heavy rainfall conditions are expected over East Rajasthan, East Madhya Pradesh, coastal Karnataka, Telangana and Vidarbha for next 2 days. Meanwhile, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with the possibility of light rain today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
8: Thank you, Anuja. All the dailies have covered the news on the rapidly warming oceans, raising the likelihood of heat waves, droughts and heavy rainfall across large parts of the world. Hindustan Times writes, El Nino to intensify rapidly by September, set off weather chaos. A headline in the Statesman says, India emerges as one of the lowest cost major solar power markets globally. Sent to summon Meta officials over alleged child sexual abuse ads on Instagram, cites the Times of India. An editorial in the Pioneer states a recent judgment in the Apex Court, the landmark judgment, recognizes homemakers as nation builders. The article adds that 15-17% of the GDP is contributed by unpaid caregiving work, household or unrecognized work. The Asian Age and all other dailies have noticed the Defence Acquisition Council clearing over 50,000 crore rupees of military purchases for all three services to boost combat readiness. All the dailies have noticed the government's order on removal of the three Chinese apps after these were allegedly found being misused for stalling e-rickshaws. The Hindu writes, SIT likely to re-audit Ram Temple Trust accounts for 5 years. And finally, a report in Times of India states, Bangalore, Chandigarh and Delhi having the highest average income in the country. And with that, it's back to you, Anuja.
5: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals and men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

वेल माय डियर फ्रेंड्स, ये दुरिया फिलहाल है कि मान भी होसा से आमी खानी इतुनिशिना आमी खानला लव्ड वन्स नली भी आपनी खान भाप माने भाभी थागा मोंदे भाभी थागा फैमिली मेंबर्स कान घर मनु कान हो पड़े नली भी इतुनिशिना मोंदे एकदम मोंद पिटोटे थागा ला फ्रेंड्स कान लोगों दे इतुनिशिना आमी खानी भापना कुरे थागे लेकि मान भी भाला से राइट anyway, yada apni khan laga kunba messages kan moi bri di hobo before we move on with our next song. Jai Mata Di Radio Listeners Group, Bravi Kanahonik Nine Drag Resonant Likhi Di Ase, Durkesh Prab Ela Nasha Gate Play Kuri Di Ase, Kushi Paha Chanai Di Ase. So my dear friends, moving on, yada apni khan ni huni hobo, you know, sometimes all we need is a peaceful melody to slow down and appreciate life's simple moments. Aro itu kana honi kana ami khani itu ke remind kori dia hobo. Wake up Seth film prati ase kavita Seth aro Amitabh Bhattacharya awaste. Music dise Amin Trivedi, lyrics Javed Akhtar. Aro itu geet pra kavita Seth, he won widespread acclaim for her soulful rendition, while Amin Trivedi's music gave a film. A fresh sound. Honikina Enjoy Groovy, my dear friends.

0: News, music and entertainment. FM 103 megahertz.
1: Welcome back, my dear friends, and Mikhail over the next caller. Hello.
2: जी नमस्ते
1: जी नमस्ते हु इज ऑन द लाइन
2: प्रेम सिंह सिसोदिया ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से
1: ओके प्रेम सिंह जी प्रोग्राम में स्वागत है और पता है आज का दिन कैसा रहा
2: जी बहुत ही अच्छा दिन गया आज अभी तक तो हमारा आपसे बात भी हो रही है तो और भी अच्छा लग रहा है
1: क्या बात है और पता है आज कौन सा वाला गीत सुना जाऊंगा
2: अंदाज फिल्म का सुनवा दीजिएगा
1: अंदाज
2: हाँ किशोर कुमार की आवाज में ये जिंदगी एक सफर है सुहाना
1: अच्छा ठीक है क्यों क्यों क्यों ये गीत सुना है
2: हाँ बहुत ही अच्छा लगता है किशोर कुमार की आवाज में कॉमेडी वाला गीत है ये
1: जी
2: और आपको बताऊं जब ये गाना किशोर कुमार ने गाया था और फिल्माया गया था ना
1: जी
2: उस समय पर काफी लोकप्रिय हुआ था ये गाना
1: क्या बात है ठीक है
2: और अभी तक मतलब इस गाने की ऐसी छवि बनी हुई है कि मतलब हर बार कई बार सोता सुनते हैं इस गाने को और मतलब बार बार सुनने की इसी गाने को चाह रखते हैं
1: वो सही है तो थैंक यू सो मच प्रेम सिंह जी आपसे बात हुआ अच्छा लगा और किसी का नाम लेना चाहूंगा
2: जी बिल्कुल हमारे दोस्त है आशुतोष अविनाश संगीता जी भगवान सिंह परमार केसी सिंह राजपूत सारुनूर अंसारी और आपके लिए रहेगा तनुश्री के लिए रहेगा रमेश टेलर भोपाल से और सुनील झा भोपाल से
1: ओके थैंक यू सो मच
2: राम बाबू शर्मा भी इस कार्यक्रम को सुनेंगे थोड़ी देर में
1: ओके ओके ठीक है तो
2: और मैं एक बात बताना चाहूंगा
1: जी बताइए
2: जी मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूं मैं और बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करता हूं
1: जी
2: और मतलब आकाशवाणी के जरिए हमें ना बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले अभी कल हमारी बात हुई थी असम के भाईकन मुंडा से
1: जी
2: और असम से ही एक और है कमल बसमतारी उनसे भी हमारी बात हुई है बहुत ही अच्छे लोग है और मतलब हमें कॉल द्वारा बात हुई और अच्छे से दोस्त मिले
1: क्या बात है मतलब रेडियो का मीडियम से आप सिर्फ सुनने वाला नहीं क्योंकि पूरा देश में जहां जहां से भी आप कनेक्ट हो रहा है राइट
2: जी
1: या क्या बात है बहुत बढ़िया खबर है और इस बढ़िया खबर के साथ सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग
2: जी थैंक यू सो मच सर
1: वेलकम बाय तो माय डियर फ्रेंड्स प्रेम सिंह ससुदिया जी उज्जैन मध्य प्रदेश पर তাহির রিকুয়েস্ট করা গীত আমি খান শুনি হব আন্দাজ ফিল্ম রা কিশোর কুমার অবস্থায় মিউজিক দিছে শঙ্কর জয় কিষণ লিরিক্স হরসাদ জয়পুরী আর তাই কোয়া নিচিনা তাই লাগা লিসনার ফ্রেন্ডস কন সবকে তাই ডেডিকেট করে দিয়েছে শুনে কিনা এনজয় করবি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস

0: Well, my dear friends, we have the next caller with us. Hello.
1: Hello.
0: Hello, who is on the line?
1: सर नमस्कार.
0: नमस्कार.
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम माया तहसील रहती जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ सर जी.
0: जी रमेश जी, प्रोग्राम में स्वागत है. और बताइए आज का दिन कैसे रहा?
1: बढ़िया है. शाम को रात में पानी गिरा, आप दिन में धूप निकली आई है. थोड़ी गर्मी है, थोड़ी मतलब ठंडक है, दोनों के आनंद ले रहे हैं.
0: क्या बात है, ठीक है. तो बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना जाऊंगा?
1: हंसते जख्म है क्या?
0: हंसते जख्म, मैं देखता हूँ. हंसते जख्म है. हाँ,
1: उसमें यह है, ये माना मेरी जान ये मोहब्बत सजा है.
0: ये माना. यस.
1: हाँ,
0: और बताइए कौन कौन किस किस का नाम लेना चाहूंगा?
1: सबसे पहले तो आपको ये गाना डेडिकेट होगा.
0: थैंक यू.
1: वो भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी, गजराज लोधी जी, केसी सिंह राजपूत है, मंगला चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया, धर्मवीर है दिल्ली से, लोकेंद्र वर्मा उज्जैन से, आशुतोष जी संगीता जी, पूर्णमा जी पूनम जी कानपुर से, अविनाश जी राकेश जी शिमला से, शिवा विदिशा से, विमल भस्माकारी अमल भस्माकारी गोल्डी जी, अमर सिंह साहू, रमेश पात्रे भाई को मुंडा, और रक्कू विले बेथा, और हमारी तनुश्री बिटिया सबसे अच्छी, उनको ये गाना रेडिकेट रहेगा.
0: ओके, थैंक यू सो मच रमेश जी. तो
1: जी
0: सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग. ओके,
1: जी जी धन्यवाद.
0: यू वेलकम. बाय.
1: वेलकम.
0: তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, রমেশ প্রজাপতি জি এমপি রা মিখান রেগুলার লিসনার থাকি আছে, তাই রিকুয়েস্ট করে লাগা গীত আমি খান শুনি হব. আর তাই নাম ল সবকে একটু গীত ডেডিকেট করে দিয়ে আছে, হাস্তি জাকাম ফিল্ম রা সোনু নিগম সুকুমিন্দর সিং কোয়া গীত খরস, মিউজিক দিছে মদন মোহন, লিরিক্স কাইফি আজমি.

0: Well, my dear friends, I'm Mikhail Logoday, the next caller with the case. Hello? Hello?
1: हेलो
0: Hello, who is calling?
1: जी सर नमस्कार, गजराज
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: लोधी बात कर रहा हूँ, रेलाई राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से। गजराज
0: ओके, एमबी से नाम?
1: लोधी
0: गजराज लोधी। ओके, गजराज लोधी, प्रोग्राम में स्वागत है। और बताइए, आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: जी, आपकी थोड़ी सी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। हेलो,
0: अच्छा, आपका आवाज भी ऐसा मैं सुनता हूँ, लेकिन बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: सपने साजन के टाइटल सॉन्ग बजा दीजिए।
0: फिल्म का नाम बताइए फिर से।
1: यही है फिल्म का नाम भी,
0: नहीं, फिल्म का नाम बताइए फिर से।
1: सपने साजन के।
0: सपने सजन गए, मैं देखता हूँ सपने सजन के। शायद शायद मेरा म्यूजिक बैंक में यह वाला नहीं है, सॉरी,
1: अच्छा ये नहीं है,
0: नहीं है बताइए। और तुषार,
1: तो हिम्मत वाला का सुनवा दीजिए।
0: हिम्मत वाला फिल्म का नाम है? हिम्मत वाला फिल्म भी शायद मेरा म्यूजिक बैंक में नहीं है। और बताइए, आपका
1: तो
0: लिस्ट में
1: फिर
0: क्या क्या है?
1: हमारे पास अभी

0: दिल है कि मानता नहीं,
1: हाँ दिल है कि मानता नहीं है, और कौन सा वाला गीत?
0: इसमें कौन कौन से गाने हैं सर दिल है कि मानता नहीं में?
1: बहुत गाने हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, मतलब टाइटल सॉन्ग।
0: जी
1: दिल दिल दुझ पे आ गया एक है, हम तो मशहूर हुई है,
0: जी
1: कैसे मियाज आपके हैं, ओ मेरे सपनों के सौदागर, आता ये भी है मोहब्बत भी, दुल्हा दो दुल्हा मैं, कलयत संखाली सुनियाची एक है, मैं
0: जी
1: हाँ कौन सा बोला?
0: जी जी जो आपने पहला बताया था ना वो ही सुनवा दीजिए। हाँ
1: अच्छा दिल तुझ पे आ गया,
0: जी
1: अच्छा ठीक है। और मिस्टर गुजरात लोधी जी, राइट,
0: जी
1: आपसे मैं शायद पहले पर बात हुआ है
0: हेलो
1: जी,
0: हेलो।
1: आवाज़ सुन रहे हैं?
0: हाँ सर, आपकी आवाज ही आते आते एकदम हमारे पास एकदम प्रॉपर नहीं आ रही है।
1: हाँ कभी कभी ऐसा होता है, मतलब नेटवर्क की वजह से,
0: जी
1: लेकिन पता है आपसे पहले पर हम बात हो रहा है, राइट?
0: हाँ जी। वैसे तो सर आपकी आकाशवाणी में मैंने कोई माह में लगा चुका हूँ मैं पहले, मगर पहली बार आपसे बात हो रही है मेरी।
1: जी, तो
0: जी
1: ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुआ, और
0: हाँ, हमको भी बहुत अच्छा लगा।
1: ठीक है
0: और ये गीत सर आपके लिए और हमारे रमेश प्रजापति, केसरी सिंह राजपूत जी है,
1: जी
0: और राकेश जी हैं शिमला से, मांगीलाल चंदेल जी, नरेश प्रजापति जी हैं,
1: जी
0: और जितने लोग अभी अविनाश जी हैं, और बाकी लोगों का मैं बहुत सारे लोगों का नाम भूल रहा हूँ, तो
1: जी
0: उनसे माफी चाहता हूँ कि इस गीत में सभी लोगों को सुनवाना चाहता हूँ,
1: ठीक है
0: और
1: ठीक
0: राम
1: है,
0: बाबू शर्मा जी को।
1: ओके ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
0: ओके नमस्ते।
1: नमस्ते बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमिखल लागा लिसनर एमपी ब्रा गुजरात लोधी ताई रिक्वेस्ट को लगा गीत अमिखा न हुनिया बो दिल है के मंता नहीं फिल्म रा अनुरता पुडवल और अभिजीत अवस्थे म्यूजिक दिसे नदीम और श्रवण लिरिक्स समीर और ताई नाम लो सब के इडुकी डेडिकेट कर दिए से।

0: आकाशवाणी।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: ओ भैया जी, दीदी जी, सभी को नमस्ते। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बहुत नमस्ते। मेरा वाला सॉन्ग यानी कि आपके नाम से सॉन्ग चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने ये कहा कि सर मैंने आपको मैसेज तब भेज दिया था, आपने अभी तक गाना क्यों नहीं चलाया, मतलब सर हमारा गाना क्यों नहीं चला पा रहे हो, सर ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है मेरी, एक मैसेज भेजोगे तो वो मैसेज इस समय अगर स्क्रीन पे देखोगे तो ये बिल्कुल भर चुकी है, और जो ऊपर आते रहेंगे वो बाकी जो है वो नीचे जाते रहेंगे, तो मैं कहां कहां तक उसको ढूंढता फिरूंगा। इसके लिए एक सबसे अच्छा काम ये है कि आप जो मैसेज है ना, जो आपके गानों की फरमाइश है, आप उसको लगातार, अगर वो मैसेजेस आता रहेगा तो क्या मैसेज बार बार स्क्रोल होकर ऊपर आता रहेगा, तो ज्यादा चांसेस हैं आपके गाना चलने के लिए। तो सबसे पहली जो लिस्ट हमारे पास है, ये हम आपको लेके चलते हैं, देवभूमि उत्तराखंड, कविता जी की फरमाइश है। गाना जो उन्होंने कहा है, ये गाना वाय वाले फिल्म का हैरो है, तो फिर पहला ये उत्तराखंड, उसके बाद देखो फिर कहां लेके चलते हैं आप। कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा गीत चलाने की, ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम आने की, और अगर ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, एक ही गाना होगा तो सब लोगों को सुनना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए 9868107070 हमारा नंबर है। आप भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बता सकते हैं। शुरू हो चुका है मेरा वाला सॉन्ग यानी कि आपके नाम से चलेगा गाना गाना गाना।

हम सीधा दिल्ली उत्तम नगर में, जहां पर खोरवाल परिवार हमारे साथ हैं। भाई दो गानों की फरमाइश है, लेकिन हम उत्तम नगर के जितने भी खोरवाल परिवार के सदस्य हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि अब जो गाना चल रहा है वो होली चौक उत्तम नगर से आप लोगों के लिए चल रहा है गाना। तो बस गाने को एंजॉय कीजिए, और भाई अगर गाना चल जाए तो हमें बताते भी रहिए कि आपका गाना चल गया है, चल गया है, चल गया है, चल गया है, चल गया है, चल गया है। मैंने क्या बोला? 9868107070 नंबर है, बताइए आप भी।

आपको लेके चलते हैं हम सीधा अमरावती महाराष्ट्र में, जहां पर वो गाने सर इतने सारे गानों की उन्होंने नाम लेके मेरे को दे दिया है, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा सर एक में से, उनमें से एक तो गाना कोई ना कोई मिल ही जाएगा उनमें से करके। तो ये गाना हमने निकाल दिया है आपके लिए, बहुत अच्छा वाला गाना है। आपने भी हमें भोजा तो फिर हमको भी पता लग रहा है, भोजा भोजा करके बैठ के बहुत प्यार करते हैं सर तुमको सनम, हम भी आपको ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो पता कैसे चलेगा? 9868107070 से पता चलेगा।

भाई देखिए, जिसका गाना चल चुका है अगर वो बार बार फरमाइश भेजेगा, इसका मतलब आप देर से हमारे साथ जुड़े हैं। मैसेज भेजते रहिए है।

लीजिए जी, हितेंद्र दास जी आसाम से। अब आपकी फरमाइश, हम आपको आसाम लेके चलते हैं। आसाम के बाद कहाँ नंबर आएगा भाई? गाने हम बहुत सारे यहाँ पर, जो फरमाइश है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी आपके गाने चलाने की, वो भी आपके नाम से। लेकिन मैसेजेस आते रहेंगे, वो मैं बहुत ये स्क्रीन ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ये ना हो जाएगा सर आपने हमारे गाने चलाए, सर आपने हमारे गाने चलाए सर। अरे भाई चलाएंगे चलाएंगे, अरे भाई आपको चलाएंगे। 9868107070 हमारा नंबर है। कोशिश सभी की फरमाइशों को पूरा करने की है।

0: जितने मैसेज होंगे गानों के आपके भी गाने चलेंगे आपके नाम से।
1: देखिए मेरी कोशिश, मैंने क्या बोला कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश है आपके नाम से गीत चलाने की। अब तनु जर्मन वाश ने हमें अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने गाना लिखा है, सर गाना ये आपका ये चल चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके नाम से भी गाना चल सकता है। जैसे सौरभ अनिजा ने कहा, भाई साहब कोई भी फरमाइश नहीं है, बस आप नाम ले लीजिए। ऐसे ही हमें जम्मू कश्मीर से राजू मल्होत्रा, रानी मल्होत्रा, इन्होंने कहा सर आप बस नाम ले दीजिए, वही बहुत है हमारे लिए, कितने अच्छे लोग हैं देखो हैं। आप भी बोलिए अपने दोस्तों को, हैं देखिए जो यहाँ से मैसेज आ रहे हैं इतने सारे हमारे धड़ाधड़ धड़ाधड़, भाई मैसेजेस आपके ऊपर दिखेंगे ना तो चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, ध्यान रखो भाई।

0: भाई देखिए कभी कभी गाने कैसे होते हैं हमारे पास, कभी कभी गाने की एक ही गाने की जो फरमाइश है वो भी अच्छा अच्छा लगता है कि जब वो गाना कई सारे लोग सुनना चाहते हैं। जैसे ये वाला जो गाना था, ये वाला गाना आप देखेंगे तो वैसे तो ये हमारे पास अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से था, वाशनी फैमिली का, लेकिन मोहम्मद इम्तियाज़ भाई जवाहर कैब से उनको लगा भाई मनीष भाई ये वाला गाना हमारा भी पसंद का आप भी चला देंगे, तो भाई चल गया, देखो सबका काम हो गया, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है किसी का नाम नहीं आ पाता है, किसी का गाना नहीं चल पाता, तो देखिए नाराजगी होती है भाई, ये बात अपन को भी समझ में आ रही है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अब रामबाबू मालविया, मनीषा मालविया, कोलार रोड भोपाल, कौन सा गाना, जे बाला।
1: वो बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, भाई कैसे देखें, गुस्से से देखें क्या हम हैं।
0: किसी भी गीत में शामिल करने के लिए कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारी और ताहिरा, और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, अब्बासी परिवार के सभी लोग, पूरा अब्बासी परिवार, गीत सुने, आनंद उठाएं और खुश हो जाएं।

अरे जय तो हम भी कह रहे हैं, हमें भी तुमसे ऐसे प्यार हो जाएगा। भाई रात भाई जान, भाई कैसे हो गजाला बाजी? देखो आपके लिए भी अब गाना, अब आपका नंबर हमने लगा दिया है। सलीम भाई मैं क्या आदाब है, रेशमा बाजी आपको भी। भाई अलीगढ़ वालों, भाई आप सभी के साथ साथ देखिए जो गाना चल रहा है ना, गाने के साथ साथ जो गाना आ रहा है एंजॉय कीजिए, ज्यादा अच्छा ये है। गाना सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा चलता रहेगा, है ना? कोशिश मेरी यही है, मैंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा गाने चलेंगे आप सभी लोगों के लिए कोशिश। और दूसरा भैया, भाई ये गाना चल गया आपके नाम से तो अब ये बार बार दो दूसरे गाने भेजे जाओ, भेजे जाओ, भेजे जाओ, तक कहां रखूंगा इन्हें। वैसे एक बात की बहुत खुशी हो रही, बहुत ज्यादा। अगर आप भी अपने नाम से आप चाहते हैं कि आपके नाम से गीत यहां पर चलाए जाएं, तो आप प्लीज मैसेज जो है 9868107070 पर भेजते जाएं, भेजते जाएं, भेजते जाएं।

भाई देखिए ये उत्तम नगर से, भाई अब देखो ऐसे मत करो, आपके नाम से गाने चल चुके हैं, बाकी लोगों का भी नंबर आने दो, ऐसा नहीं है भाई। अब जिन लोगों का नंबर आ चुका है धन्यवाद करते रहें, इसके साथ साथ में और लोगों को आगे बढ़ाते रहें।

पहले मैं बाकी लोगों के नाम तो ले लूं, उसके बाद गाने चलते रहेंगे भाई। अब हम आपको लेके चलते हैं आनंद विहार। आनंद विहार से हमारे साथ किशन वंजनी, नीलम, स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से आपका गीत हमारे साथ और हम सब इसका आनंद उठाएंगे। मैंने क्या बोला, कोशिश ज्यादा से ज्यादा है हमारे साथ है भाई। गुड्डू भाई भी जुड़ चुके हमारे साथ मध्य प्रदेश से। गुड्डू भाई, भाई क्या हो रहा है? भाई अलीगढ़ वालों देखो, मैंने गाना चला दिया, अब आज से तुम मच करो मेरे साथ। मैं नहीं तो सलमा भाई तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। भाई बाजी का थैंक यू आ गया।

भाई रिमझिम रिमझिम वाले मौसम के अंदर मनीष गौड़ और राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे साथ के सर देखिए यहाँ भी रिमझिम है भाई। देखो मनीष भाई वो गाना और ये गाना दोनों के दोनों बराबर से चल रहे हैं साथ साथ में, तो इनका भी आनंद लेते रहिए ना।

वैसे तो ये लगन भाई साहब बहुत देर से, मतलब कहते हैं ना कि ये मानसून आया, देर से आया, लेकिन जैसे मानसून आया आप सभी लोगों के चेहरे खिल गए और फिर आप लोगों ने गानों की फरमाइश यहाँ पर कर दी। अब हमारे पास उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश कुमार, उनके मम्मी पापा कन्हैया लाल, रीता देवी आपके प्रोग्राम को सर सुन रहे हैं, बहुत अच्छा जी, और आपके नाम से मैंने गाना भी निकाल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ठीक है, वो कभी कभी क्या है वो नीचे लग गया है। सुमन करमारकर हमें सोनीपत आसाम से, नयन, मीरा, पूनम, शिवानी, प्रशांत, और देखिए मैं आपको बोलूंगा सर खोरवाल परिवार जी, मैंने पहले से बोल दिया था, बोधराज खोरवाल जी, कमला रानी जी, गीतिका खोरवाल जी, भानु प्रकाश जी, आप सभी के नाम मैं पहले भी ले चुका था, पूरे के पूरे खोरवाल परिवार हमारे साथ जुड़े पड़े हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रदीप सलूजा जी, मैं क्या पाजी पंजाबी दे गीत तो सारे हैं, तुम ये सड़े सड़े नाल वैसे ही नाच ले हो, तो सभी उथे नाचो, असी इतने नाच रहे हैं, ठीक रहेगा, ठीक है जी। और गाने देखिए, मैंने कहा आपसे कहा ना कि गाने की जो फरमाइश है, अगर आप कभी कभी क्या होता है एक मैसेज भेज के वो चला जाता है, लेकिन वो बार बार अगर मैसेज वो आ गए ना, तो वो ऊपर आपके मैसेज जो हमारे पास बने रहेंगे, तो उससे क्या रहेगा कि मेरे को ऊपर वाले गाने बिल्कुल याद रहेंगे, तो उससे पता चल जाएगा भाई साहब ये वाले गाना जो लगातार इसकी फरमाइश हमारे पास आ रही है। मेरठ कैंट से भी सर हमारे साथ प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच है सर जी। अब ये अगला गाना फरमाइश।

भाई जिन्होंने अगर देर से अगर अभी अभी अपना रेनबो सेट ऑन किया होगा तो उन्होंने कहा मैडम जी नमस्ते, देखो सर जी मैं कह रहा हूँ मैडम नहीं यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, आपका गाना हम चलाने की कोशिश करेंगे उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार खयाला से।

अगला जो गीत है अब ये कौन सा है कि उन्होंने कहा सर आप कौन, ओपी राठौर सर की तरह? नहीं नहीं सर, वो बहुत लेजेंड आदमी है सर, मैं तो बहुत छोटा सा, मेरा नाम तो मनीष आजाद रेडियो वाला है सर, कोशिश मैं तो अपने प्रोग्राम को करने की कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ें हैं। श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं और गोवा से, आपकी फरमाइश सर।

और आप सभी हमारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा वाला धन्यवाद, थैंक यू सो मच है। और ओपी राठौर सर से आपने मेरा, मतलब उन्होंने कहा आप ऐसा कर, नहीं सर मैं वैसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ सर मैं से, वो बहुत लेजेंड के भी लेजेंड है और हम तो बस छोटे से एक कलाकार हैं सर। अब आपको लेकर चलते हैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हर किरण सर हमारे साथ हैं। सर जी ने जो गाना कहा है, हरकिरण सर मैं तो दसना की जी ए जो गाना ना मैं कल तो बहुत, मतलब इन्नी बार मैं याद किया, मैं ये गाना नू थैंक यू सो मच कि आपने ये वाला गाना भी आपने बोल दिया, तो मतलब एक पसंद आपकी और मैं एक पसंद मेरी, दोनों की दोनों मिल गई। बिजनौर वालों भाई आपके पास ही आ रहा हूं मैं इस हफ्ते। वाशने परिवार के वकील बाबू, अरे अब तो मान जाओ। अच्छा रिंकू भाई, आपने जो गाना लिखा है वो गाना मैं आपको बता दूं कि वो गाना हमारे पास वो नहीं है, तो इसलिए वो गाना नहीं चल सकता सर जी। कोई और गाना बताइए, कोशिश करूंगा पूरा पूरा।

0: जी बुलंदशहर से रिंकू भाई, जो गाना आपने कहा, हमने कहा ना, जो वो नहीं मिला तो जो नहीं मिला वो आपको बता दिया, जो मिल गया वो वाला चला दिया आपके लिए।
1: रेशमा
0: अब पता चली तुम ये गाना क्यों सुनना चाहते थे, इसमें नाम ऐसे बोल रहे हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया।

मौसम मुझे ऐसे लग रहा है कि हर जगह पर बाहर बिल्कुल औसम औसम हो रहा है। तो चलिए जी, इस औसम मौसम के अंदर इस मौसम में थोड़ा सा और मौसम बना देते हैं, शुक्र को शनिवार बना देते हैं। मनीष जी, मजबूर फिल्म का गाना चला दीजिए। लीजिए साहब, आपका गाना हम आपके लिए बिल्कुल तैयार करके रखे हैं। हमने जरा सा उस पर सब पराठे पे थोड़ा सा मक्खन लगा दिया है आपके गाने पर। मक्खन ज़्यादा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए बताइए? भाई मुझे तो पराठे बहुत पसंद है। वो कहते मोटे हो जाएंगे, अरे हो जाना थोड़ा सा चलेगा। जब इस तरह के गीत चलेंगे ना तो अपना आप ही मज़ा इसके अंदर दो गुना हो जाता है। क्या कहते हो? अभी भी हैं वैसे तो 5-7 मिनट, अभी भी आपके 2-3 गाने तो चले जाएंगे। देख लो, अभी तक 14 गाने चला चुका हूँ मैं।

जैद और हुदा गाजियाबाद से। अब ये जो फरमाइश है ना, आपकी फरमाइश आप देखो यहाँ पे चलने वाली है। कैसे ऐसे अब हमारा भी जाने का समय आ जाएगा भाऊजी। कंचन स्टूडियो में पहले आ चुकी हैं और जब तक ये डूडू डूडू कर रही है मैडम, तब तक थोड़ा सा गाना और आपको बता दूं कि आज का जो प्रोग्राम था ये कौन सा मेरा वाला सॉन्ग आपके नाम से चला। ये भाई साहब 15वां गाना चला रहा हूं मैं। अपने आप को सोच लो क्या किया आज, कैसे चलाएं गाने। प्रोग्राम शुरू होने वाला है आशियाना। कंचन आपके साथ में होंगी, उसके बाद प्रोग्राम होगा रेडियो डॉक्टर। कोमल आपके साथ में होगी, कोमल भारती। प्रोग्राम होगा अल्फा जैन आपके साथ, कंचन फिर से होंगी और सिटी लाइट लेकर कोमल हाजिर होंगी। प्रियंका त्रिपाठी लेकर आएंगी प्रोग्राम माँ से, वैसे तो मनीष होता लेकिन ये मैसेज मसाला मिक्स करेंगी वो, है ना। उसके बाद सुशांत आएंगे लेकर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का सैटरडे सेजलेस। उसके बाद नविता कुमारी प्रोग्राम करेंगी पॉडकास्ट विद, उनके पॉडकास्ट का प्रोग्राम है द आकाशवाणी पॉडकास्ट, तो इसको जरूर सुनेगा, ठीक है।

0: आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, आपने ट्यून कर लिया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम आशियाना के साथ मैं कंचन। इतनी सारी बातें घर परिवार की जिनके इर्द गिर्द हमारी जिंदगी जो है ना घूमती रहती है और हमें सुकून मिलता है तो सिर्फ अपने अपनों के बीच, अपने घर में, अपने आशियाने में, अपने घरौंदे में। तभी तो घर परिवार की तमाम बातों को समेट कर हम आ जाते हैं प्रोग्राम आशियाना के साथ एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक। नमस्कार, मैं आपके साथ कंचन हूँ। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो दिल से जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ आकाशवाणी पर।

दोस्तों, घर एक ऐसी जगह है जहाँ बस प्यार बसा होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, तभी तो हम घर से इतना अधिक प्यार करते हैं। घर एक ऐसी जगह है जहाँ दिल को मिलता है सुकून, एक ऐसी जगह है जहाँ कोई पूछने वाला होता है कि तुम इतना थके क्यों हो, तुमने खाना खाया या नहीं, है ना। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और वैसे तो छुट्टी वाले दिन घर में सभी बहुत आराम करने के मूड में होते हैं। सुबह देर से उठना, थोड़ी बातचीत, गपशप, और उसके बाद घड़ी के साथ तेज़ रफ्तार में घर बाहर के सारे कामकाज को ख़त्म करने की एक कोशिश चलती रहती है सबकी। और कभी कभी तो लगता है कि छुट्टी वाले दिन ज़्यादा ही थकान हो जाती है, लेकिन वो थकान महसूस नहीं होती क्योंकि हम अपने अपनों के साथ बैठते हैं, थोड़ा सा बेफिक्र होकर बैठते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, बतियाते हैं, हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, और अपने पूरे परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छा समय बिता पाते हैं, तभी वो थकान जो है महसूस नहीं होती। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, मैं आपके साथ कंचन, बहुत ही मीठे मीठे, बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ।

हमारे घर में, हमारे आशियाने में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम सोचते नहीं हैं, सोचते कुछ हैं और हो कुछ भी जाता है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपने छुट्टी वाले दिन घर में बहुत सारा काम बिखेरा हुआ है, घर पूरा फैला हुआ है, कपड़ों की धुलाई, फर्श की सफाई, कबाड़ का जुगाड़, बगीचे की सफाई, खाना, रसोई की सफाई, उफ इतने सारे काम है ना, यानी पूरा घर जो है ना थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, उल्टा पुल्टा है। और इसी बीच अचानक थोड़े से मेहमान आ जाते हैं, फिर क्या होता है आपके साथ, आप थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्या हो जाता है बताइए ना। चलिए बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन इस गीत के बाद। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, आप जुड़े हैं FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

बिल्कुल, हमारे आशियाने में सबके लिए जगह हो क्योंकि वहाँ बस प्यार और प्यार बसा है। वैसे छुट्टी वाले दिन जब घर बहुत बिखरा हुआ हो, सारा कुछ अस्त व्यस्त हो और आप बिल्कुल छुट्टी के मूड में हो और तभी बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, फिर क्या होता है आपके साथ कि आप थोड़े परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या नाराज़ होने लगते हैं धीरे धीरे करके, गुमसुम होकर। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ऐसे स्थिति में बहुत ही आराम से, बहुत ही खुश होकर चीज़ों को हैंडल करने की बहुत धैर्य से ज़रूरत होती है। कोई मेहमान अगर आपके घर में आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि वो आपको कितना अपना समझते हैं ना। अगर कोई किसी को अपना समझते हैं तभी तो जाते हैं उस घर में। और जैसे कि हमारी दादी नानी या हमारी अम्मा बिल्कुल दिखावे से दूर होकर मेहमानों का स्वागत करती थी, शायद हमें भी वैसे ही करने की ज़रूरत है। और आज के समय में अगर कोई आपके घर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। घर जैसी भी स्थिति में है, बहुत ही खुले मन से, बहुत ही प्यार से स्वागत करना हमारे परिवार के दिए हुए अच्छे संस्कारों को ज़रूर दिखाता है। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

बिल्कुल, घर है दोस्तों तो कभी घर सजा संवरा रहेगा, कई बार अस्त व्यस्त रहेगा, और हो सकता है कि छुट्टी वाले दिन हमारा घर जो है थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है कि खाने में मेहमानों को हम तरह तरह के व्यंजन

ना परोस सकें, लेकिन जो कुछ भी घर में पका है उसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपनापन के साथ हमें परोसना होगा। और ये भी स्वीकार करना होगा कि घर है साहब, तभी तो वो कभी कभी अस्त व्यस्त भी है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। घर हर वक्त सजा सवरा नहीं रह सकता है, क्योंकि घर घर है, हमारा घर आता है, कोई होटल नहीं है जो बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से सजा हुआ सवरा हुआ चकाचक रहेगा। इसलिए खुलकर अपने घर में मेहमानों का स्वागत कीजिए और बिंदास एक बहुत ही अच्छा पल बिताइए। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही मीठे मीठे गीत हम सुनवाते रहेंगे। जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: वाकई दोस्तों, मौसम बहुत प्यारा है। फिलहाल समय हो चला है 2:28:37। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

जी बिल्कुल, हम भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और कई बार हमारी भी ऐसी ही भावनाएं होती हैं कि ईश्वर ना करे कि हम आपसे बिछड़ें। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना और हमें पता है कि आप अपनी बगिया से, वहाँ के पौधों से, पेड़ पत्तों से बहुत अधिक प्यार करते हैं। अब देखिए ना, गर्मी में हमारे पौधों की क्या हालत हो गई है, हमारी बगिया की क्या हालत हो गई है। उन्हें पूरी गर्मी बचाने की हमारी कोशिश रहती है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए, लेकिन झमाझम बारिश होते ही हमारी बगिया में जो मौसम का रंग है ना, वो दिखने लग जाता है, पौधों में नई जान आ जाती है। और मानसून के दस्तक देते ही अपने पौधों की रिपोर्टिंग करने से लेकर खाद डालने और नए नए पौधों को लगाने की भी तैयारी शुरू हो जाती है। तो बगिया की देखभाल में घर के पूरे सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए और पता ही नहीं चलता कि कब हमारी जो बगिया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो गई। और इसी बहाने घर के पूरे सदस्यों के साथ मिलकर हम एक कप चाय तो पी ही सकते हैं। और एक बहुत अच्छा समय होता है जब बगिया के ढेर सारे कामकाज को हम हाथों हाथ कर लेते हैं और हम भी एक बहुत ही अच्छा समय बिता पाते हैं अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना और मैं आपके साथ कंचन। दोस्तों, आम का जो मौसम है ना, वो अपने चरम पर है। बाजार में तरह तरह के आम हैं, मालदा, दशहरी, चौसा, केसरी, बम्बई और भी तरह तरह के आम। और आम का मौसम जो है ना, वो सिर्फ एक बार आता है साल में। और माना जाता है कि आम खाने से वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। पापा जी को डायबिटीज़ है और वो कहा करते हैं कि क्या साल में एक बार आम आता है तो क्या आम ना खाएं? जी सर, आप आम ज़रूर खाएं और आम खाने का आनंद लें, लेकिन एक्सरसाइज और फाइबर युक्त डाइट से भी पक्की वाली दोस्ती कर लें, ताकि आम खाने का कोई नुकसान ना हो आपके। और आम के साथ साथ जामुन भी खाते रहें, क्योंकि जामुन जो है ना, उससे कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल रहता है, पेट में जितनी अशुद्धियाँ होती हैं वो गल जाती हैं। और देखिए ना, प्रकृति ने भी हमें सेहतमंद रहने के लिए बहुत कुछ दिया है। मौसम में ही स्वस्थ रहने के बहुत सारे नुस्खे छुपे होते हैं, तो उन चीज़ों से हम दोस्ती करें जो हेल्दी है। और जो हमारी दादी नानी कहा करती थी कि जिन्हें खाने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है, तो आम के बाद जाम यानी जामुन, और जामुन के बाद फिर आम खाएं, लेकिन एक्सरसाइज करें और अपनी डायबिटिक डाइट जो है वो भी जारी रखें। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना और बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हम सुनवाते रहेंगे इस प्रोग्राम में।

आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों, हम लोग एक दूसरे से कितनी अधिक शिकायत पालते हैं ना, सास को बहू से शिकायत, बहू को ननद से शिकायत। और आज के दौर में अगर देखें तो फ़ोन भी रिश्तों के ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। फ़ोन पर छोटी से छोटी बातों को हम शेयर करते रहते हैं। पड़ोस की अम्मा कहती हैं कि आजकल लोग घर की हींग से लेकर हल्दी तक फ़ोन पर ही बतियाते हैं, यानी कि घर की छोटी से छोटी बातों को शेयर कर देते हैं। ससुराल की बात मायके में, मायके की बात ससुराल में, और फिर क्या होता है कि हम दूसरे को अहमियत देना कम कर देते हैं। घर की हर छोटी छोटी बात शेयर करने से लोग शायद हमारे घर में बसे प्यार को समझ ही नहीं पाते, उन्हें गंभीरता से ले ही नहीं पाते। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को सिर्फ अपने तक रखना अच्छा होता है। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, मैं कंचन।

हमारी भी तो यही ख्वाहिश होती है ना कि हम अपनों के साथ जी भर कर खुल कर जीते रहें, इसलिए अपने बुजुर्गों के कांपते हाथों को कस कर थामे रखिए, बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ मुस्कुराइए और सजाते रहिए अपने आशियाने को। मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक। दीजिए विदा मुझे, नमस्कार।

हाँ जी बिहार लिसनर्स जे सोमाने दिसे दि रियल टाइम दि कोइमा ट्राफिक लागे जानकारी आरे दि कोइ दिसे मोंकला टु बीएचक्यू जंक्शन माजे दिले नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड टु द डायरेक्शन दि ट्राफिक तो हल्का आसे लाइट आसे बीएचक्यू जंक्शन टु मेजर जंक्शन माजे दिबे नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दि ट्राफिक तो लाइटे आसे आरो टीसीपी टु राजो पॉइंट माजे दिले नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दि ट्राफिक तो मॉडरेटे आसे यानी ट्राफिक तो मान पिछिबे नै मान कमटिबे नै एकटा हिसाब दि जाय आसे आगो अलग रास्ता लोगले तो TCP to Razo Point, Noliba Pox Carrying to NHAK to Census Point, Noliba Bulbari to Kochuzi Ground to Razo Point, Ito Rasta Khan Lobo Paribo. Razo Point to Census Point, Aro High School Junction to Census Point, Aro NHAK Junction to Census Point, Ito Rasta Khan Dito Northbound or Southbound to be traffic to Lighted Ikhase. Ito Seb Nani Dehonili, Real Time to Kohima Traffic Lager Jankari, Aro Idi Agi Parayi Nani Diula Se Program Local Artists.

0: Good evening. Itu Agashwani Kohima. Samlaka khobor puri ase imkum nongla. Pohila headlines. Chief Minister Nipi Ruba tractors are utility garikando CM's corpus fund nichide bhag kore dise. Pradhan Mantri Narendra Modi ba India laka sabse pohila Greenfield refinery cum petrochemical complex dedicate kore dise. Union Minister Rajnath Singh ba manufacturing aru technology de India ba bishi barhai jalaka janai dise aro ekta slow lorries lokote Sukhalabose Janapoto district de bachai dise. Itia pura khobor. Chief Minister Nipi Ruba, 35 tractors aru choita utility gari khando CM's corpus fund nechede aji agri expo jumukote madi bhag kore dise. Beneficiaries lokote kotha kore Shri Ruba kuise Nagaland laka kam se kam 70% population bra kheti kam kore kena kheti do state laka economy laka sabse dorkar hisabe thaki ase. State team mati bhal thakia laka janagina taibra kisan kan lokote nicho kheti laka faida uthabole aru modern agricultural adat chalai kena productivity uthai dia lokot nicho livelihood sudhar kori dibole mon uthai dise. Fixed Bharat 2047 laka sapna di dhorigina Shri Ruba kuise ki sarkar ba alag alag schemes pra unnati dibole aro lomba samoy tak taka paisa growth to entrepreneurs vyapar aro manukhan laka kaam upori thaki ase koise. Chief Minister ba manukhan ma jodi agi barhai jadu desh laka sab jaga unnati karne dorkar ase koise. Pradhan Mantri Narendra Modi ba India laka sabse pehla greenfield refinery kam petrochemical complex so desh namide aji Rajasthan bra dedicate kore dise. Shri Modi ba unnati projects on a foundation to 1.05 lakh crore taka upordo panchpatra Rajasthan di bohai dise. Mado jama kori thakia khan logote kotha kore Pradhan Mantri bra koise ki West Asia di jhakra jari thakia bhi Jakra jari thakile bhi India bra nature resilience aru strategic planning bra dukhan logoti samna kori ase. Tar bra India laka refining capacity barhai dia aru itia duniya laka charta wala sabse dangor refining desh hoi ja laka janai dise. Itia samoy di LPG supply laka dukhan janai gina Pradhan Mantri bra koise faisla khan tu patience mehnat aru diplomacy bra banai gina crisis logoti samna kori adu itihas te yaad koribole ase koise.
1: संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया
0: Defence Minister Rajnath Singh ba aji India laga manufacturing aru technology de bishi aki barhai jalaka janai gina desh laga defence exports pra 38,000 crore taka upar punji laga koise. Eta private media organization ba Nai Delhi de Afzal Jorka Guriyati kotha kore. Shri Singh bra koise financial sell 2013-14 de 686 crore taka thakia bra 57 par nishina uthi ja dikhi ase aro make in india defense platform de pura duniya bra vishwas uthi jai ase
2: sathiyo mobile manufacturing mein pehle keval 18,000 crore rupaye ye mobile manufacturing value ki thi jo aaj 28 times 28 guna badhkar 5.5 lakh crore rupaye tak pahunch gaye kareeb 163 guna badhkar 2.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है साथियों 2014 तक भारत 50,000 करोड़ के आसपास ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता था आज भारत एक साल में 1,20,000 करोड़ रुपए के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट शुरू किया है
0: Journalism over Kotakure, Shri Singh Brakwesike, Asli Arusahi News Diato, Subsi Taja Kobor Diapori, Dorkarase, Tabrakwesike, Journalism Laka Safal Daldo,

0: Artificial intelligence are human sensitivities majority sahi balance aro jury rakhiboli paria upore thaki ase shri singh bra technology aro morom niyom milai dia to ahi thake samay di journalism laga sabse dangor takat hobole ase
1: main samajhta hu tab har shabd keval samachar nahi rehta hai balki rashtriya daitva ban jata hai aaj bharat ka media paridrishya abhutpurv gati se vistar kar raha hai aur pichle ek dashak mein देश में रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस की संख्या लगभग एक लाख से बढ़कर 1.5 लाख से अधिक हो गई है। पब्लिकेशंस की संख्या, निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। मैं मानता हूं कि यह केवल मीडिया का विस्तार नहीं है बल्कि भारत में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति और संवाद की बढ़ती हुई यह शक्ति का भी प्रमाण है।
0: पार्लियामेंट लगा मॉनसून सेशन तो जुलाई 20 तारीख पर अगस्त 13 तारीख तक रखी बला से पार्लियामेंटरी ऑफिस मिनिस्टर किरण रिजिजू आज जनाय दी कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पर सेशन रखी सरकार लगा प्रपोजल दी अनुमति दी श्री रिजिजू कैसे कि सेशन बा मतलब थकिया बहस चर्चा और देश लगा डांगर इश्यूज लगा फैसला खान दी ध्यान रखी आसे आकाशवाणी कोहिमार पर अपनी खान लगते खबर आनी दी आसे ताजा खबर निबो कारण अमी खान लगा एक्स एंडल्स AIR न्यूज एलर्ट्स और AIR अंडरस्कोर कोहिमा दी फॉलो करी अपनी खान पर यह खबर तो न्यूज ऑन ईयर एप और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज कोहिमार पर शुनबी पा वेलकम बैक अपनी खान सामलगा खबर शुनी आसे एक स्लो लोरेज तो निहत के यथमे सौखालो बस्ती जनहबोध डिस्ट्रिक बचाई गना जनहबोध डिस्ट्रिक टूरिज्म एसोसिएशन ZTDA लगते सुरक्षित और जतन कर रखी कन्सालटेशन और दरकार एसेसमेंट कर पाचदी ZTDA बचाई रखा स्लो लोरेज तो नैचुरल हेबिटेट सौखाई बायोडाइवर्सिटी कन्जार्भेशन एरिया छड़ी दी जनहबोध डिस्ट्रिक टूरिज्म एसोसिएशन निहत के यथमी और सौखालो बस्ती मानुखान जिम्मी मीडर कम और जानवर बचाई रखी कमिटमेंट दी मन खुशी जानाइसे एसोसिएशन रिजन लगा धुन बायोडाइवर्सिटी जतन कर रखी कम्यूनिटी भाग लगा लगा दरकार जानाइसे ZTDA मानुखान लगते जानवर खान जोखम दुख नहले बाहर खान दी दिखिले अथरीटीज नहले कन्जार्भेशन अर्गेनाइजेशन रिपोर्ट कर जानवर खान पेट्स हिसाब नाराखी अनुरोध कर उखा डिस्ट्रिक्ट पर एनवायरमेंट और क्लीनलीनेस ड्राइव लगा सबसे पहला एडिशन तो लुंगसा बस्ती दी आज थिंक क्लीन एंड लिव ग्रीन लगा थीम नीचे दी लाखों कर दी प्रोग्राम तो लुंगसा गवर्नमेंट इम्प्लॉयज यूनियन पर लुंगसा विलेज काउंसिल मिला गिना रखी से प्रोग्राम तो कल्चरल हॉल दे खुलाई दी गिना एक मास क्लीनलीनेस ड्राइव तो बस्ती दी रखी गिना 92 सैपलिंग्स खान रोपाई दी प्रोग्राम की कथा कर डेपुटी चेयरपर्सन हुखा टाउन काउंसिल अंजानो पी किकन सुखा और गिला छापरा खान अलग अलग भाग रिसाइक्लिंग बढ़ाई दी प्लास्टिक बटल्स कमटी चलाबी और सैनिटरी और मेडिकल वेस्ट खान मिलिया नियम दी डिस्पोज करे तार बस्ती मानुखान लगते एनवायरमेंट बचा दी और ड्राइव समय सैप्लिंगस रोपाई दिया खान सरा पाचती बस्ती सन्दी एनवायरमेंट जतन कर रखी अनुरोध कर इम्प्लॉयज यूनियन पर क्लीनलीनेस ड्राइव तो महीना दी दुबार रखी जानाइसी और हर परिवार लगते कम से कम एक ऑर्नामेंटल ट्री रोपाई गिना बस्ती चंद्र बनाई दी मन ठाई दी लुंगसा विलेज काउंसिल वोखा डिस्ट्रिक्ट पर इंडियन मेड फॉरेन लेकर IMFL कब्जा कर रखिया खान आज बस्ती भर नष्ट कर दी माना कर दिया बस्तु खान पब्लिक और अथरीटी सामने दी नष्ट कर काउंसिल मधु और नाश्ता कर दिया दावी माना कर दिया ऊपर बस्ती लगा रिजल्यूशन नामानिया खान कारण बस्ती लगा कानून हिसाब कारज सजा दी जाना इटर सब बस्ती मानुखान हेल्दी शांति और ड्रग फ्री कम्यूनिटी रखी अनुरोध कर यू निचिना नियम न खान बस्ती अथरीटीज रिपोर्ट कर फेफा वर्ल्ड कप राउंड अफ 16 दी आज शुरू कर कैनाडा मोरक्को ह्यूस्टन टेक्सास दी आज रात खेल मेच तो रात 10 बजे आधा इंडियन स्टैंडार्ड टाइम दी शुरू हम कैनाडा साउथ आफ्रिका लगते हर दिखना सबसे पहला बार नकआउट स्टेज पुंजी और मोरक्को नेदरलैंड्स एक पेनाल्टी शूट आउट हर दिखना आगे बढ़ाई जैसे दूसरा राउंड अफ 16 फिक्चर तो पारकुए फ्रांस लगते फिलाडेल्फिया यूनाइटेड स्टेट्स खेल मेच तो पुजुर 2 बजे आधा दी शुरू हबले आसे खबर शेष दी हेडलाइन्स दोबारा जाना आसे

0: Good evening, dear listeners, and welcome to our sports program. I am your host, Sanchitang Murray, for Akashwani Kohima. This evening, we will continue with our interview with Dr. Nita Kumari, the boxing coach of Nagaland at the Khelo India Center of Excellence at the IG Stadium. Good evening, ma'am, and thank you so much for your time. We had a wonderful interview on the first part. On the second part, we would go to a little bit of the technical side of boxing and also the future prospect of boxing here in our state, Nagaland.
1: Thank you so much for inviting me again for the second session. I'm very happy.
0: Ma'am, when we left off in our last interview, we talked about the fundamentals of boxing, where you spoke about how a person is made up physically is also very important, the upper body strength, lower body also, and you take all of those into consideration before children even begin their training sessions at your center. So one of the things that struck me when you were saying that is that how important is just natural talent, strength, and how important is a proper structured training? How can we combine all those three to make a very good boxer?
1: Yes, as you are talking about the natural talent, physical strength, importance of structured coaching to develop good boxer. All these three things are very much required. Natural talent is what? Here we are talking about the natural talent. Natural talent is referring to his body structure.
0: Okay.
1: Or inbuilt body. Okay. Jaise ki uska long arms hona, bigger fist honi chahiye. He can have a better reach. Usko aur uska upper body strength hona chahiye, lower body strength hona chahiye. Lower body strength is required for the footwork. Upper body strength is required for the punching power hona chahiye uske punches mein. To wo sari cheeze हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो ये होती है हमारा नेचुरल टैलेंट, हम जिसे कहते हैं, या नेचुरल इनबिल्ड बॉडी होती है. अगर हमें इनबिल्ड बॉडी मिल जाती है तो उसके ऊपर जब हम स्ट्रक्चर प्लान करके, जैसे हम ट्रेनिंग प्लान करके जब वर्कआउट करते हैं, तो जो हमारा बच्चों का परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर आता है. एक सपोज फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. आपके पास दो बच्चे हैं, ठीक है? एक तो अप्रोच से आया है बच्चा, और एक बच्चा आया है जो सच में मतलब उस गेम के लिए बना है, जैसे बॉक्सिंग के लिए बना है. तो अभी क्या होता है, जो बच्चा अप्रोच से आया है तो वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है, क्योंकि हमारी जो लोड है, चाहे वो फिजिकल लोड हो या मेंटल लोड हो, ठीक है? तो फिजिकल लोड जो हम देते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू देते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग्स देते हैं, एंड साइकोलॉजिकल लोड होता है कि वो उस ट्रेनिंग को बियर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जो फिजिकल लोड है वो कहीं ना कहीं उसको

0: मेंटल लोड दे रहा है, ठीक है। तो उन चीजों को बैलेंस करने के लिए हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो इनबिल्ट हो या फिर उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो। तो अप्रोच वाला बच्चा क्या होता है, वो आने वाले टाइम में क्या कहते हैं, आफ्टर वन ईयर और टू इयर्स इतु तो ना पर वो ओके। देन हम उनसे यही क्वेश्चन करते हैं, तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप इसे ज्वाइन मत कीजिए क्योंकि हमारा जो है लोड बढ़ेगा टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे लोड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इट्स बेटर, हम यही कोशिश करते हैं कि हम अप्रोची चिल्ड्रन ना लेकर एक ऐसा बच्चा ले जो कि मेरिट बेसिस के ऊपर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जो मेरिट बेसिस पर बच्चा आता है, तो मेरिट बेसिस पर वो वाला बच्चा आता है जिसका हम फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं, ठीक है, थ्रू सर्टेन टेस्ट ओके। उसका मेंटल लेवल चेक करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट थ्रू स्पायरिंग एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें हम उसका देखते हैं कि उसका स्ट्रेंथ वो हम उसको डिफरेंट टेस्ट देते हैं, लाइक 800 मीटर्स रन दे दिया उसका एंड्योरेंस चेक करने के लिए, शटल रन दे दिया उसकी एजिलिटी है या नहीं है, ठीक है। उसकी हाइट मेजर कर लेते हैं कि ये आगे अगले टाइम में वो आफ्टर फ्यू ईयर्स ही विल गेट टॉलर और नॉट, ठीक है। उसके अलावा हम उसको 30 मीटर स्प्रिंट दे देते हैं उसकी स्पीड चेक करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जैसे हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच दे देते हैं हम उसको, टेस्ट कंडक्ट करवा देते हैं। तो जब इन सारी चीजों में वो मतलब अच्छे से उस लेवल को पार करता है, तो हमारे लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स है बॉक्सिंग जो है, अब हम खड़े खड़े नहीं खेल सकते हैं, उसमें आपका डायनामिक भी है और स्टैटिक भी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज वी आर अप्लाइंग दो स्ट्रेंथ्स इन द पंचेस, ठीक है। और जब हमारा बॉडी में स्ट्रेंथ होगा तभी हम रिंग में, क्योंकि हमारी जो बाउट्स होती हैं डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट होती हैं, जैसे कि जैसे कि सब जूनियर है, तो अभी सब जूनियर का जो है 1 मिनट 30 सेकेंड्स का 1 राउंड होता है विथ 1 मिनट रेस्ट, बट It is 3 rounds are there with 1 minute rest in each.
1: In sub junior, three rounds.
0: Three rounds amateur boxing में हमेशा 3 rounds होते हैं, but the timings are different.
1: I see.
0: We are having the different level of the boxers like sub junior, junior, youth, and then seniors.
1: All right.
0: ओके तो जो हमारा सब जूनियर है वो 1 मिनट 30 सेकेंड्स का होता है, ठीक है, पर राउंड, बट देयर आर 3 राउंड्स और 1 मिनट 30 सेकेंड्स विद 1 मिनट इंटरवल। तो ऐसे ही जूनियर का 2 मिनट्स का होता है, ठीक है। और ऐसे ही सीनियर एंड यूथ एंड सीनियर्स जो होते हैं उनका जो होता है वो 3 मिनट्स विद 1 मिनट रेस्ट ऑफ 3 राउंड्स। तो उनकी जो टाइमिंग्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए है बॉक्सिंग के लिए, हमें इंड्योरेंस भी चाहिए है, हमें स्ट्रेंथ इंड्योरेंस भी चाहिए है, हमें स्पीड इंड्योरेंस भी चाहिए है, हमें मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर एबिलिटीज आर रिक्वायर्ड, हमें एजिलिटी भी चाहिए है, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए सो दैट पावर कैन कम इन टू द पंचेस और उसमें उसको ज्यादा इंजुरीज के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो दीज आर द मोटर कंपोनेंट्स विच इज रिक्वायर्ड इन द ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टू ब्रिंग देम अप। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड्योरेंस किस लिए चाहिए, 1 मिनट 30 सेकेंड्स का राउंड है या 3 मिनट्स का राउंड है, उसमें एरोबिक एंड एनारोबिक होता है इंड्योरेंस में।
2: सो देन मैम, हाउ डू यू ट्रेन द चिल्ड्रन टू गेट बेटर इन इंड्योरेंस, यू नो व्हाट आर सम ऑफ द ट्रेनिंग टेक्निक्स दैट आर देयर फॉर जूनियर्स, सब जूनियर्स, youth, or for the seniors, you know, what are some of the steps that you take so that they will be able to endure this physical stress that they go through when they are in their ring? Yeah.
0: Okay. One is in the track.
1: Okay.
0: Okay.
1: All right.
0: One is in the gym. We can develop our endurance. That depends ki which type of endurance we are requiring. Suppose we have a requirement of the athlete. He will be there in the 3 minutes in 1 round. So we need an aerobic and anaerobic, both the endurance. Aerobic is when we work in the presence of oxygen. Okay, when we are getting continuously oxygen, then we are working. That is, these are the sciences which is very much required in the, you know, sports. Okay, and there is a anaerobic endurance. Okay, aerobic endurance is for the longer duration.
2: All right.
0: Okay, so he's there in the 3 minutes round of 3 into 1 into 3. So
2: okay.
0: 9 minutes he has to be there in the ring.
2: Mm-hmm.
0: Actually, we say it's 12 minutes.
2: Okay.
0: So, for a longer duration, we are working on aerobic. Okay. Mm-hmm. This is one part only.
2: Okay.
0: Not a fully part.
2: Okay.
0: And then anaerobic.
2: Okay.
0: Anaerobic is when we work under the absence of oxygen. Absence, we call it. It is a science, mm-hmm. you know, word. Mm-hmm. We call absence, but there is no absence. Mm-hmm. There is a lack of oxygen.
2: Mm-hmm.
0: When we work under the lack of oxygen,
2: mm-hmm.
0: That is called aerobic.
2: Can you give us an example of that?
0: Yeah. For example, mm-hmm. you go to 30 meter sprints.
2: Okay.
0: Okay. Mm-hmm. You are going with the full speed.
2: Mm-hmm.
0: You know, mm-hmm. you are not able to take the oxygen properly.
2: Mm-hmm.
0: Okay.
2: Okay.
0: Right. So that is the 30 meter sprint is an anaerobic.
2: All right.
0: Okay. And then aerobic is you are continuously running for 12 minutes.
2: Mm-hmm.
0: You are running with a pace small, slow, not too high, not mm-hmm. too low,
2: so
0: moderate.
2: We are not breathing so hard.
0: We are not breathing so hard.
2: Yeah.
0: So for for endurance, we go for running and all.
2: Okay.
0: So now this is I'm talking about aerobic and anaerobic.
2: Okay. Right.
0: Now we need an explosive strength also.
2: Mm-hmm.
0: Okay?
2: Mm-hmm.
0: Explosive strength.
2: Mm-hmm.
0: So here we need a lot of, motor components.
2: Mm-hmm.
0: Okay? It's not only that we need endurance or strength only.
2: Uh-huh.
0: But we need a specific endurance, specific speed endurance we need. Okay, we need a specific strength endurance. We need a power also.
2: Yes.
0: We need a explosive strength also.
2: Explosion of power. Yeah.
0: Because explosive strength. And that explosive strength we developed in the gym also.
2: Okay.
0: So,
2: weight training and all those things.
0: Yeah, weight training. Okay, explosive strength when load is less.
2: Mm-hmm.
0: Okay, when load is less, repetitions are more. When we are using repetitions more, the repetitions with the speed, it should be explosive to develop the explosive strength.
2: Mm-hmm.
0: Okay?
2: Mm-hmm.
0: And when load is more, repetition will be less.
2: I see. Okay.
0: Okay?
2: Okay.
0: Because load is more.
2: Mm-hmm.
0: Here we are talking about 20 kg.
2: Mm-hmm.
0: That depends on the body weight.
2: Oh.
0: That depends on the 1 RM. Maximum repetition. Okay, that is all scientific.
2: Mm-hmm.
0: Okay, so when load is more, repetition will be less.
2: Mm-hmm.
0: Suppose you are carrying 50 kg weight. There is a one child.
2: Mm-hmm.
0: Okay, he is also carrying the same weight, and one child who is 11 years
2: mm-hmm.
0: old, he is also carrying the same weight.
2: Mm-hmm.
0: And there is a 15 years old child. He is also the carrying the same weight. Okay?
2: Okay,
0: because the training experience, training years also matters a lot.
2: Yeah.
0: One is a new child, one is an old child.
2: Mm-hmm.
0: 11 year old is an old child and 15 years is a new child. So, बच्चों में थोड़ा दिखा मतलब होता है ना कि हम भी शो करें. Yes,
2: yeah,
0: we are also having power, you know. तो क्या होता है जब वो बच्चा वेट उठा रहा होता है तो अगर पुराने बॉक्सर्स हैं, if there is a ओल्ड बॉक्सर्स ऑल्सो तो 15 जो ईयर्स का है उसको मैं 7 रैप्स भी दे सकता है. आई कैन गिव देम 5 रेपिटिशंस ऑल्सो. ओके, बट जो 11 ईयर्स का बच्चा है उसको 3 रेपिटिशंस एंड 2 रेपिटिशंस इज सफिशियंट ना. तो वो होता है, लेकिन उसके लिए भी हम 1 मैक्सिमम रेपिटिशंस निकालते हैं, 1 RM निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनका वेट इंक्रीज करते हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत टेक्निकल होती हैं. ठीक है, तो उसमें भी हम वही देखते हैं कि अभी हम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस डेवलप कर रहे हैं या फिर हम उसका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहे हैं या पावर इंप्रूव कर रहे हैं. और वही ये जो सारी चीज़ें हैं दैट अप्लाइज इन द रिंग या इन द पावर.
2: Thank you so much, ma'am, for so comprehensively breaking down the structure of the training system that you go through, that the children go through, and then the level of detail that you implement in their training process. It's so wonderful to hear all this technical side of boxing. So wonderful, ma'am. So thank you so much for that. Before we conclude this second part of our interview, ma'am, are there some certain goals that you would like to achieve before your tenure here in Nagaland concludes, ma'am?
0: I would like to say that we are preparing the children from the different age level. Mm. So our child is starting from 8 years, mm. 9 years, mm. 10 years, mm. 11 years, mm. okay, mm. and 15 years, 17 plus, mm-hmm. 16 also. Mm. Okay, so we are having the different level of the boxers. So 8, 9, 10, 11, mm. okay, and below 12, okay, they are called as a masters, okay? Right. Okay, they are the masters, mm. okay, then after 12 years, 12 to 14 or 12 to 15, they are the sub juniors, and 15, 16, 17, mm. okay, 12 to 14, hmm. 12 to 14 are sub-junior. Hmm. Abhi na hamara different ho gaya hai boxing ka. Hmm. Hamare mein na ab na jaise under 15 hai, hmm. under 14 hai, hmm. under 23 hai, hmm. under 19 hai, under 17 hai. Hmm. So we are having different, main dobara se bolti hun. Jaise ki hamara first under 15 hai, hmm. then under 17 hai, then our under 19 hai, under 23 hai, and above hai. ठीक है? So under 15 or 14, तो उसमें 12 years or 13 years can also participate. Okay? और उसमें क्या है? अब आपने कहा है कि आप मतलब next 3 to 4 or 5 years,
2: yes.
0: आप क्या देखते हैं? ठीक है? Boxing का status. In the present days, mm. and we are hoping for the 2036 Olympics that Nagaland should participate, any even one or like child should participate from boxing, okay. in the Olympics 2036. Mm. Abhi kuch din pehle meri director sir se baat ho rahi thi, so we were talking together, then unhone bola 24,000 athletes mein se ek bachcha nikalta hai Olympics ke liye. So 20 athletes are very less.
2: Yes.
0: So we need at least some of the numbers like 60, 70, 80. We need at least 80 children, 100 children.
2: So your ultimate goal in the next few years that we have, that you have as a coach here in Nagaland, is to have at least one boy or girl to represent India in the Olympics.
0: So my ultimate goal is 2036, okay. not 2000 even 28, not even 32. My target is 36 because we are working on the young children's, okay. masters. So there are some children, those who are very good, and we are developing them very slowly because as we are having not proper facilities, so we cannot give them a hard training. Okay. If we will give them hard training, they will injure, they will go back to home. Then again, जो हमने उसके ऊपर एक साल पैसा जो यूटिलाइज किया है, जो मनी जो गवर्नमेंट दे रही है, वो वेस्ट है. That is the wasted. ना तो इसीलिए हम इन छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, so that they can come up in 2036. Yes.
2: Thank you so much, ma'am, for giving us a wonderful insight into the sport of boxing. And it's so interesting to have sat down with you. What a privilege. And thank you so much for giving Akashvani your time. It is much appreciated. Thank you, ma'am.
0: Thank you so much.
2: That was Dr. Nita Kumari, the boxing coach of the Nagaland State at the Khelo India Center of Excellence at the IG Stadium here in Kohima. Thank you, dear listeners, for tuning in to our program. Please tune in next week. Until then, this is your host, Sanchitang Muri, signing off for Akashvani Kohima.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के बचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना

0: योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा

0: रणनीतिक साझेदारी लोकतंत्र सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal

होने ठगा सब लक्ष्या को स्वागत कर से आकाशवाणी एफएम ट्रैक पर 110 मेगाहर्ट्ज पर रानी डीएस पुरानी हिंदी फिल्मी किट्स प्रोग्राम

लता मंगेशकर लगावा स्टेप नालू के हुनी ढगे से फिर वही रात फिल्म की गीत हुनी ढगा सब लाख प्रोग्रामों टे बार दूसरा गीत दिया से आराधना फिल्म और आपको गाया से किशोर कुमार